मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। ए चिंता उपजी काट में है, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस में है पाग्यो।

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहन वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहन वास्ते घर ये सारी जिहड़ी

सत्संग धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते किथे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जेड़े आनंदपुर साहब रहा करते सन वो कहंदा है मैं आनंदपुर साहब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजियां महाराजियां मिलना बड़ा औखा है जिन्हां राजियां महाराजियां दी एक झलक देखनी बड़ी औखी है उन्हां राजियां महाराजियां नूं मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार ते दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे है। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे आके झुकदे ने ओ गुरु इतनी निम्रता इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन रहन वास्ते घर सब कुछ खालसा।

सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु धन गुरु नानक देव जीओ महाराज नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिन मंत्र सुनाया पवजल विचों कढ के मुक्त पदार्थ माहे समाया ज्यो बुलावे तुम बोलहिं स्वामी ज्यो बुलावे तुम बोलहिं स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की

गुरु नानक पद पंकज वंदन। गुरु नानक पद पंकज वंदन। सिमरो अंगद दुख नकंदन। अमरदास।

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधार।

का कर चवर टलावा, चरण तूड़ मुख लाई। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। संत

संत सरन जो जर परै सो जन उदर नहार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता,

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही पूर। साध की शोभा का नहीं आने, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजियां लगवाउन दे लई, सत्संग हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनियां बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा जीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी 300 साल दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। ये कितने दिहाड़े कठे होए हैं। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नू मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, वडभागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जाण नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत, इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहिगुरु परमेश्वर बे अंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें इक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन कीता, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरुषां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी साहिब दे विच वर्णन करदे हन। असीं लोक ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असीं किन्ने नीवें चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच परम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरां दे दुखां सुखां दे विच फसे होए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए होए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेडे परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूल नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखमनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हों देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मने गए हैं। जा रहे हैं किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे ना ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती ते नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हों लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पूछती है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: यह धरती का कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती की यह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्मज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साढ़े लोगों वास्ते। भावे संसारक तौर पर महापुरुषों के जीवन नू कोई सास मुस का कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असी अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरश जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सास संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान साध संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह साध संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत सुणाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी साध संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओ डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्हां ने यह कहना कीता कि भाई गुरमुख सिंह, अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज असीं जल्दी जाना है, साडे कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असी जल्दी जाना है, जल पानी छकन दा चाह पानी छकन दा सानू ना मजबूर ना करो, साडे कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी, साडे कोल टाइम तो नहीं है, परंतु असी चाहते हां कि असी बाबा हरदित सिंह उन्होंने दे इस ते असीं नमस्कार कर लिए, एक बारी गुरु साहब नूं मत्था टेक लिए। संत गुरमुख सिंह जी हाथ जोड़ के कहिंदे ने, जिवें आप जी दी मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरशां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असीं लोक मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुत इन्हें तो मत्था लाया भी नहीं, जे किसी ने लाया तो थोड़ा जा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। पांच मिनट निकल गए, सारे देख रहे हैं, दस मिनट निकल गए, पंद्रह मिनट निकल गए, बीस मिनट निकल गए, पच्ची मिनट निकल गए। बोलो
1: सतनाम,
0: इतने मिनट नमस्कार, इन्नी लम्मी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी, ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहंदे, असीं सोचदे हां भई 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह के भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी एक बारी होर मत्था टेक लिए, बोलो सतनाम। टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा एक बारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपकी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे। इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया, बोलो सतनाम। संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच एक ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले तां तुसीं कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, नाले तुसीं मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दुबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है, बोलो सतनाम। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन होया है, असी तो अपने आप नू नमस्कार करके मत्था टेके चार्ज कर रहे सी, बोलो सतनाम। जिमें बैटरी डाउन हो जाती है कम करदी करदी, फिर उस नू चार्ज करने की लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेके असी अपने आप नू चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो साध संगत जिथे वाहिगुरू दा भजन, वाहिगुरू दा सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असीं एवें नहीं कहंदे, इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे असीं मत्था टेकदे हो इह धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसे ने परमात्मा दी याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: ऐसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहने फिर पढ़ो।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज नांगलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिन्ने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिन्ने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इस नूं घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनूं भी कई लोग लानता पाउण लग गए घर वाले नूं भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुर पीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सत्संग कीड़िया दे भौण ते सुट दिंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सत्संग गलेल दे विच सत्संगत पा के गोले चलाउंदे, सत्संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सत्संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सत्संग तुफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ।

जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, किस बारिक भूख कैसी, नवनिद नाम निधान के तेरे मन पहुंचे सोले सी। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

就是高，就是高，就是高，不打，总还没得双米。这是我的不不可开心，脑里的那么的谈个对的，满分却输了心。पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बार

ऐसे जीने लो, ऐसे जीवन लो। सतगुरु ने त्रिगाकार करके आखे, जेड़ा जीवन नाम तो विहून है, जेड़ा जीवन नाम तो बिना है।

0: क्यों डिठो घड़ियाल एन दूसा मारिए हम दूसा दा क्या हाल।
1: फरीद साहब भगती करन गए वापस आए कि वेख देने बहुत वड्डा सारा एक दरवाजा जिस दरवाजे अंदर एक कड़ियाल टंगी। कड़ियाल नूं वेख रहे सन एक संतरी आया हाथ विच लकड़ दा हथौड़ा फड़े उस हथौड़े दे नाल इस कड़ियाल ते चोटा मारनिया शुरू कीती। जद कड़ियाल नूं चोटा वजियां फरीद साहब ने अपने मन नूं संबोधन कीता ते सानूं कल वी उपदेश जीवां नूं उपदेश दे रहे। कहिंदे ने फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल एन दोषा मारिए हम दोषा दा क्या। हे फरीद एन दोषा इसने कोई दोष भी नहीं कीता न दोषा ही मारिया जा रहे ते असी ता दोषी हां साडे दोषां दा की हाल होवेगा। असी कितना वड्डा दोष कर रहे हां मनुखी जामा भी धारण कीता संसार ते आए भी लेकिन बखूने जा रहे हैं किस तो नाम तो बिना। फरीद साहब बड़ा सुंदर ख्याल देंदे ने

फरीद ए चोटा कड़ियाल नू नहीं पै रही, जे तू ही नहीं नाम जपेगा तेनू भी इस तरह ही चोटा पैनिया। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, संसार ते आए किस लई, नाम जपन लई सिमरन करन लई, लेकिन कर की रहे हैं।

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कभी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवें मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा,

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है।